0: क्या
1: कोई फर्क नहीं अलबत्ता कोई फर्क नहीं अलबत्ता
2: कोई फर्क नहीं अलबत्ता कोई फर्क नहीं अलबत्ता दुखी बेदुखी

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

0: यूं ही साथ साथ चलते।
1: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: बिल्कुल दोस्तों, आप गीतांजलि सुन रहे हैं एंड द लास्ट सॉन्ग वी हर्ड द वॉइसेस ऑफ सुखविंदर सिंह, अ वेरी वेरी यंग सुखविंदर सिंह एंड ऑफ कोर्स जॉइन दे बाय संजीवनी भेलंडे, आई थिंक दैट्स हाउ हर नेम इज प्रोनाउंस, बट अनयूजुअल कॉम्बिनेशन दे एंड ऑब्वियसली अ सॉन्ग दैट आई पर्सनली हैवंट हर्ड बिफोर, बट वी थैंक संजय फॉर locating and sharing that song with us for today's program. जी हाँ दोस्तों, आप गीतांजलि सुन रहे हैं और कुछ ही क्षणों में हम थोड़ी सी हिंदी सीखेंगे.
1: You are listening to Geetanjali.
0: जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने आपसे पूछा कि इस idiom मतलब कि इस मुहावरे का मतलब क्या है, और आज का idiom है माँ के दूध का कर्ज चुकाना. माँ के दूध का कर्ज चुकाना, तो चलिए हम आपको बताएं कि who are the good folk who got this correct.